दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जा हूं करी ना होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह ज्योत ज्योत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाले ओ जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया। सो दर राग आशा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परी स्यों कही है केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंदर इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई।

आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। साचे नाम की लगै भूख, उत भूखै खाए चलिया है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए। रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए।

राग गुजरे महला चौथा हर के जान सतगुर सत पुरखा बिनौ करो गुर पास हम कीरे केरम सतगुर सरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम।

खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई।

काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चिटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धारत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन

चीनत नह पेवो। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए।

करो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दोष

रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर ना

आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया, शब्द ता गावो हरी केरा, मन जिनी वसाया।

दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा, नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा। जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतहू ना जाई। रव रया सर्वत्र मैं, मन सदा त्याई। यह शब्द धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 677 ते 78 अंग ते सुभायमान है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

है, प्रभु कै सिमरन सब किस जै, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाय, अमृत नाम रिदमाय समाय, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जान परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेहमोताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा बनासी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै, प्रभु को सिमरै तिन सूख बिहावै, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन नह चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जिनको प्रभ मया, नानक जिन तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पये सिजति दाते, हर सिमरन नी चौकुंठ जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंचना, कट कट नाथ अनाथ, सरन तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाय, जय मां प्यान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरा चलै, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद न परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आगावै, जे मार्ग ए जात इकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए, छूटत नहीं कोट लग बाही, नाम जपत तै पार पराही, अनक बिघन जे आए सुधारै, हर का नाम तत्काल उदारै, अनक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौ मैला मल कबू न धोवै।

ना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुकत बो करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संगवड भागी पाइय संत की सेवा नाम ते आइय नाम तल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को इस लोक बहुत

सरनी पर है। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ता कह बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सबते ऊंचा, जाका मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट कर चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप नहीं लेपा। निर्धन को धन तेरो थाओ, निथावे को नाव तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल घटा को देवो दान। करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी, अपनी गात मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवन्ना जान सकोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम किरिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उदम मैं उदम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बाणी मैं अमृत बानी, हर को जसन दसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जी।

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक भी न दे दस भी हिरले, तो मूड़ा को का करे, जिस ठाकुर से नाही चारा, तांको की जय सब नमस्कारा, जाके मन लगा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व तुख नानक तिन पाया, अगंत सा अपनी दे रास, खात पीत बरते अनंत उलास, अपनी अमान कछ बरसा ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुत उसका विश्वास न होवे, जिसकी बस्त तिस आज्ञा राखे, प्रभ की आज्ञा मन मत है, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरकी छाया स्यों रंग लावे, ओ बिनसे ओ मन पछतावे, जो दिसे सो चालन हार, लपट रहो ते अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावे ने, ताको हाद ना आवे के, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाय, मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया, मिथ्या हम मैं ममता माया, मिथ्या राज जुबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अस बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या स्वर्ण पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दर्प को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बुझे मिथ्या सब पे, सफल दे नानक हर हर नाम ले, बिरथी साकत की आर जा, साज बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाउ, नानक ताके बल बल जाउ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर पेख ना काहू पीन, अवर उपदेसे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे, जिसके अंतर बसेंदर अंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम भान तिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण प्राता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे मन है, आपे आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कज जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक।

प्रसाद गुरदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर समरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जे प्रसाद सुख

पर ठाकुर प्रभु ताकै, जय प्रसाद तुझको न पहुँचै, मन सास सास मरो प्रभु ऊचे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे, जय प्रसाद आपूखन पहरी जय, मन तिस्मृत को क्यों आलस की जय, जय प्रसाद अश्व हस्त अस्वारी, मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी, जय प्रसाद बाग मिलक तना, राग परोए प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बंत मनाई, उठत बैठत सद तिसे त्याई, तिसे त्याए जो एक लख है, इहां उहां नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करह पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू

सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।

प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु न किन्हू लया। जित जित लावो तित लगे हरनाथ, नानक इनकै कछु ना हाथ। श्लोक

सात जना की अचर्ज कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, सा संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध

साध के संग ना कब हूंता वै, साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु के संग अजर सह, साध के संग बसै थान ऊंचै, साधु के संग महल पहुंचै, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीठ कुटुम्ब निस्तार है, साधु कै संग सोतन पावै।

अष्टपदी ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जन्मे कमल अलेप ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सुख ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान ब्रह्मज्ञानी के तीरज एक जो बजदा कोदे को चंदन लेप ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्मज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अपमान ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्मज्ञानी परोपकार माहा ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी के होए सुफला ब्रह्मज्ञानी सुफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सज्जागत, ब्रह्म ज्ञानी अम्बुत्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चैंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगन मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गद ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक।

अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस मन में प्रीत निरंजन दर्स पर त्रै रूप ना पेख नेत्र साध की टहल संगत संत संग।

भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला भर्म, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मलक खोवे, तिस भगौती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंतन अर्पे बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, नानक सो हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण स्मृत बुझे मूल, सुखम मैं जाने स्थूल, चावरना को देव देश, नानक उस पंडित को सदा आदेश।

स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, जित जित कर राखे तैसा तिन्नाव, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई फुन होग, पसर्यो आप होए अनतरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अबनास, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्योहारी, कई कोट पहे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे। कई कोट पे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया शर्माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथ

इंद्र सिर छात्र सगल समग्री अपने सुधार है, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस तम साकत, कई कोट वेद सिमृत वेद पुराण सिमृत अरसासत, कई कोट वेद पुराण सिमृत अरसासत, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीव है, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीव है, कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाच, सब ते नीरै सब हूं ते दूर, नानक आप अल्पत रहा भरपूर।

फिर है कई कूड़ बैठत ही खाहे कई कूड़ काले थक पाहे कई कूड़ किए धनवंत कई कूड़ माया मह चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ के हाते कई कूड़ पे बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कूड़ प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कूड़ दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अबनास कई कूड़ मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसंग।

कोट तत के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पी वह अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समावह है।

अष्टपदी करन करावन करने जोग जो तिस भावै सोई होग खिन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किच पारा वारा हुक्मे धार अदर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्योहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभ पावै मानक गत पावै प्रभ पावै ता पाथर तरावै प्रभ पावै बिन सास्ते राखै प्रभ पावै ता हर गुण पाखै प्रभ पावै ता पति उदारै आप करै आपन बिचारै दुहा सरिया का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ हुए ता सब किछले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै पर मैं पूला दै दिस्तावै निमक माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन नाम मिले।

इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई फुन थियो, कभू ऊंच नीच में बसै, कभू सोग हरक रंग हसै, कभू

कबू नित करे भोपांत, कबू सोए रहे दिन रात, कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व की होत रवाल, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पेखारी नीच का साझा।

कबू से साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे,

अष्टपदी जिसके अंतर राज अभमान सो नरकपाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरे बहु जोन परमावै। धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां इहां मुक्त आ।

अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगे कहु कैसे गवै, आपस को जो पला कहा वै तिसे पलाई निकट न आवै, सर्व की रेन जा का मन होए, कहु नानक ता की निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारै को बैरी मीत, तब लग नेह चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक हों छूटै।

वह खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ बिरथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करन करावन।

सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक।

संत के दुखन आरजा कटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटै, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सोबाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भीतर है, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन कागजू लवै, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलै, संत के दुखन सब को छलै, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाउ को नाहे, नानक संत पावै ता ओहि भी गत पाए। संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखी यार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मैत, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दुखी अद बीज ते टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाही, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, संत का जो पावक इंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मितया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत का दुखी संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना दृष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कितना मिटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, साब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिराज, सब किच वर्तै तिसका किया, जैसा करै तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहै बीचार, जिसनो कृपा करै तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से। सलोक तजो से।

शाश्वती मन की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रह काहे बहर न तृष्णा लागे आए मारे राखे एको आप मन कह कुछ ना ही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्तत मन मैं कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग साध संग बिनसै सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर करम सरवन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बडभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह बिचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत्कियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपन आप सुझै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अनदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जमकी फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा साथ ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजया गुरु प्रसाद सब बूझया जब देखो सब सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई अस्तूल न किच जन्मे न किच मरे आपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रचत हाप उथाप अवनासी नाही किश खंड धारण तार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव परक प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारन प्रभ के सेवक दुख विसारन आपे मेल लए कृपाल गुरु का शब्द जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुख को तुम कर मान जो किच करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होवे सो होए करने हार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिसमाए समाए ओए सुख निदान उनू बनाए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरता जानन हार जा कै सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार इष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरता कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अब नासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जिसो प्राणी लोचे कोए तिस बिन नाही तेरे किच काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ जहाँ सब किस तिसका दिया दरबै असुरा जे को कहा वह प्रभु की कला बना के

थमन त्यों गुरु का शब्द मने स्थमन जो पाखाण नाव चढ़तर है प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होए बिगास जो माँ उद्यान

पूर्व लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग गुप्त सहचितार जो किच करह सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहो रसलोभी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पथ से ती कर जाहे जिस वक्त कर

अष्टपदी। अब नासी प्रभ मन में राख, मानु की तू प्रीत त्याग, तिस्ते पर नाही किच कोए, सब निंतर एक सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गही सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शेंद, साथ तेरे की चरनी पाओ, नानक के मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र न जाने होर, आनंद रूप मंगल सज्जा कै, सर्व तोक सुनिए करता कै, राज में राज योग में जोगी, तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी, त्याए त्याए भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया, जाकी लीला की मिथना है, सगल देव हारे अब गाहे, पिता का जन्म कै जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत, सुमत ज्ञान त्यान जिंदे, जनदास नाम त्या वैसे, तय गुण में जाको परमाए, जन्म रह फिर आवे जाए, ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे एक रंग, नाना बिद कीनो विस्तार, प्रभ अवनासी एक अंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूरे ओ पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाए, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाम, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे स्मृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगलाकार, नाम के तारे पूरिया सब पवन, नाम के संग उदरे संश्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सुजन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सम माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सते जन जाके हृदय प्रवेश, सत नृत बूझे जे कोए, नाम जपत ता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार, अवर ना बूझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राज जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जाके संग तरह संसार, जन का सेवक सो बड़ भागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोविंद।

अपने सेवक के सर पर रखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपद राखे, ताकि गत में तो कोई न लाके, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैत इस प्रगटाया, निकी कीरी मैकल राखे, पसम करे लश्कर।

जात, मानस जतन करत भौ भात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे न रखे अवर न कोई, सर्व जिया का रख सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ अलग बिनाणी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत हुमा तंत्र पिए, नाम तन जिन गुरमुख पाया, तिशकिस अवर नहीं दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मंतन नाम है नाम सुमान है, उठत बैठत

जानै, प्रभु अपने का हुक्म पछानै, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आड़ पहर प्रभु से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व ठोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै।

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अमर पाव सब मीत विसारू चन कमल रिद मैं उतारू करण कारण सुप्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहो हो नाम हर वथ यो धन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंड उड़ता वै सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सुबह को करह पली करनी सा सुबह पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दर गए परवान मन पर बोधो हर

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सु लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जंतर बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंदिल विलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सदगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नु सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रब रया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल ना भाना है सो क्यों बिसरे जी किया जाना है सो क्यों बिसरे जन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अग्न में राख है गुरु प्रसाद को बिरला लाख है सो क्यों बिसरे जे बिकते काट है जन्म जन्म का टूटा गाड है गुरपुरे तत यह बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरे नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भक्ति तन हो से छार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जाग पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजे प्रीत प्रेम रस जाओ मंथन अंतर इहि सुआओ नेत्रो पेक दर्श सुख होए मन बिकसे सात चरण तोए भगत जना के मंथन रंग बिरला को पावे संग एक बस दी

पशुपति जब अकार कृष्ण दृष्टेता पाप उन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर सो कहो किसे व्यापत जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मुंह का किस होत भरम अपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किसको गनी जब एके हर अगम पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब शिव सकत कहो हो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत तरह तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अब नासी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहूं कहां बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप आपे अचर जा नानक आपन रूप आपे ऊपर जा

कौन मान कौन अभमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छाल छेद्र लगत कहो कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सत भाई। जय सर्व कला अपे परवीन तह भेद कतेब कहां को चीन। जब आपन आप उतारे तो शगन अब शगन कहां विचार। जय आपन ऊज अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बेस मन बिसम रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल अछेद अभेस माया उहा किसे व्यापत माया। अपस को आपे अदेश तय गुण का नाही प्रवेश। जय एक है एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप त्यारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जय आप रचो प्रपंच आकार तह गुण मै कीनो विस्तार। पाप उनते पई कहावत को नरक को सुरंग बछावत। आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पैपार। दुख सुख मान अवमान अनक प्रकार की उपख्यान। अपन खेल आप कर देखे खेल संकुचे तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जे पसरे पसार संत प्रताप। दो पाका पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौत।

अष्टपदी। आप कथै आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार, जातिस भावे ता सृष्ट उपाय, अपने भाणे लय समाए, तुम ते पिन नहीं किछ होए, आपन सू सब जगत पुरोए, जाको प्रभु जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंत्र सबता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिस को न मारे, सो मुआ जिस मनु बिसारे, तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार, पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जानने आप, अंतर जामी रहे व्याप।

हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात के माथे नानक उदरे तिनके साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी।

देवदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर श्री एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने।

सुनिए सा सत सिमृत वेद नानक भगदास दा विकास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए अठसठ का स्नान सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान।

के गाहा सुनिए सेख पीर पातशाह सुनिए अंधे पा बहराहो सुनिए हाथ हुए अस गाहो नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागत कर्म ना लिखण हार मन्ने का वे करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन न सुरत होवे मन बुद्ध मन न सकल पवन की सुध मन ने मोह चोटा ना खाए मन ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ्यो प्रगट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मोग द्वार मन परवार सातार मन तरह तारे गुरसिख मन नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवार।

सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर करजा है जोर असंख गल वड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेश मल पख खाए असंख

तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे ते सरनाए जे फरमाए तिप तिप पाए जेता कीता तेता नाओ विण नामे नाई को थाओ। कुदरत कवन कहां विचार वारा ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार। तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तन देहे पानी तो तै उतर सोखे। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ तोए परिये।

सारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मंजी तै जगदीत आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेश भुगत गया दया बंटारण कटकट वाजे नाथ आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद अबरा।

अनाद अनिल अनाद अनाहद जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तिंचे ले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस पावै तिवै चलावै,

तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदा नव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत कड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबसूर तिनमें राम रिया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए ना ओह मरे न ठाके जाए जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के

प्रसाद अरूप है, अनु है, अजू है, अभू है, अलेक है, अनाम है, अकाम है, अदे है, अभीत है, अबे अदे है, अबे है, अजीत है, अभीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाल है, अडे है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अभंज है, अजूज है, अजंज है, अमीक है, अरफीक है, अबंद है, अधंद है, अबंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अजूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपरम है, अजीत है, अबीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंत नमो सर्व माने समस्ती निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौने, अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते, समस्ति विभूते कलंकंग बेनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम प्रदे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता पेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नृत नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेते देवेशो धर्मे, नमो राग नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्टे इष्टे, नमो त्रंत तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं परनासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा बृदकर्ता, अदो उर्द अर्धं अगं ओगहर्ता, परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अच्छेती अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्तामं, तेरा जोज छात्री छंद, जले है, थले है, अपीत है, अबे है, प्रभु है, अजू है, अदेश है, अपेस है, भुजंग प्रयात छंत, अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ती निदाने, नमस्त्वंग निराते, नमस्त्वंग प्रमाथे, नमस्त्वंग गंजे, नमस्त्वंग पंजे, नमस्त्वंग काले, नमस्त्वंग पाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सर्व रोगे, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंतंग, नमो सर्व जंतंग, नमो सर्व दृसंग, नमो सर्व कृसंग, नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजय अभिजय, नमस्तंग प्रसिजय कृपालं स्वरूपे, कुकर्मं परनासीद सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपटन त्व प्रसाद अमृत कर्मे अभ्रत धर्मे, अखल जोगे अचल पोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलमं कस अलग कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वंग भुक्ता सर्वं जुक्ता, सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रू आल छंत त्व प्रसाद, आद्रूप अनाथ मूरत अजोन पुरुष कपा, सर्व मांत्रमान देव अपेव आदुदार, सर्व कालक सर्व पालक, सर्व को पुनकाल
जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठान न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरखुदार मूरत अजोन आद असेक देश और न पेस जाकर रूप रेग नाराग जतर ततर दशा विशा होय फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखत धाम हुने जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता है एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल

जाकर जरन बरन बहीन चक्र बक्र फिरै चतर चक मान ही पुरतीन। लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जे जाप आद देवनाद मूरत था प्योसब जे था परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख पार सर्व विश्व रचय स्वयं गणन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म दाम सो परम रहत अभूत अलग अपेस अंग रागना रंग जाके जात पातना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनुस्तक आप रूप अमीक अनुस्तक एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व अभंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व साथ न जानहि जय रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही बहुचित मधुवार चंद तव प्रसाद।

देवान देव उपमा महान। इंद्रान इंद्र बालान बाल, रंकान रंक कालान काल, अनभूत अभंग अनभूत अंग आभा भंग, गतमित अपार गुणगन उदार, मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम, आत दुत प्रचंड मितगत आखंड, आलस्य कर्म आदृश्य धर्म, सर्वाभरणाडे अंडवाडे, चाची छंद त्व प्रसाद, गोविंदे मुकंदे उपारे अपारे, हरियंग करियंग निर्नामे कामे भुजंग पर्यात छंत, चत्र चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता, चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने, चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भक्ति, चतर चक्र प्रति चतर चक्र पाले, चतर चक्र काले, चतर चक्र वासे चतर चक्र पासे, चतर चक्र माने चतर चक्र दाने, चातुरी छंद न सत्र न मित्र न भरमंग न मित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये, न चित्र न मित्र परे है पवित्र, प्रति स आदि स अद्र स अक्र स भगवती छंद त्व प्रसाद, कथते के आछिज जेते के आपिज पेछे, के आगज कर्म के आबंज परम, के आपज लोके के आदत सोक, के अवधूत बरने के बेभूत करने, के राजंग प्रभाय के धर्मंग दुजाहे, के अशोक बरने के सर्वा अपरने, के जगतंग कृति है के छतंग छत्री है, के बरबंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है, के आद अदेव है के आप अपेव है, के चितंग बहीन है के कैदीन है, के रोजी रजा के रही मेरे हाक है, के पाक बेअब है के गैबल गैब है, के अफल गुना है के साहन साहे, के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है, के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है, के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है, के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने, के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साख है, के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है, के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है, के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कली में के परमंग ही में, के अकल अला में के साहिब कला में, के हुसनल वजू है तमामल रजू है, हमें सुलसला में सलीकत मुदा में, गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्ते, बिल अंदुल मकान है जमीन उल जमाने, तमीजुल तमाम है रजूअल निदाने, हरीफुल अजीम है रजाए करकीन है, अनेकुल तरंग है अपेद है अपंगे, अजीजुल नमाज है गनीमुल खिराज है, नेरुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत है, प्रभुगत प्रभा है सोजुगत स्वरूप है, सोजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है, समस्तों पर आग है सदा सर्वसाज है, समस्तो सलाम है सदैव अला काम है, निर्बाध स्वरूप है अगाध अनूप है, ओंग आद रूप है अनाद स्वरूप है, अनंगी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम है, त्रिभर्गंग त्रिबाधे अगंधे अगाधे, सुभंग सर्पागे सुसर्वानुरागे, त्रिपुगत स्वरूप है आछिज है अछूत है, के नरकंग प्रणास है पृथ्वीओल प्रवास है, निरुकत प्रभा सदैव सदा है, विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है, ने प्रभुगत अनूप है, निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है, अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है, छात्री छंद अभंग है अनंग है अपेक है अलेक है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अधंध है अबंध है अपगत है बिरकत है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिक है अधिक है अलेक है अपेक है अडाहा है अगाहा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चपणतन त्व प्रसाद।
सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं कर्ता हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल चंत त्व प्रसाद नमो नरकनाशय सदेवं प्रकाशय अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमातं परमाते सदा सर्वसादे अगास रूपे निर्बाद विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पुत्र ना पुत्र ना सत्र ना मित्र ना ताता ना माता ना जाता ना पाते न साकं सरीक अमितो अमीक है सदैव अंग प्रभा है अजा है भगवती चंत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब जमाक है के उसने चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजीदा हिंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के उसने जमान है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग पर नास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किराए के नरकंग पर नास है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवन है हमें सुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमें सुल अपेख है जमीनुल जमा है हमें कुलुमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश के हम तो सुभाष है के अजर स्वरूप है के हम तो विभूत है के हम तो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के हम तो अभंगे मधुवार चंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम हर बर अगंज हर नर पर भंज अनगन पर नाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रकाश गुनगन पर नाम जलथन मुदाम आंचे जहंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जलथल अमंड जिसविस अपंड जलथल महंत जिसविस बेहंत अनभव अनास धृत धर दुरास आजान बाहो एक सदाव ओ अंकार आद कथनी अनाद कल खंड क्याल गुर भर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनजंज गात अनरंज बात अन टूट पंडार अनठट अपार आठ करम अतीत करम अनब्रण अनंत दाता मन हंत अर बोल मना छंत त्व प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है वृत के धन है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगत्वेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है अजपा कृत है अमृतामृत है नरनायक है खलखायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पवपंजन है अर्गंजन है रिप्तापन है जपजापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वातम है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंत नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम ततंग अतंग रूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे
नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बाक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलक अपक अकाल दयाल अलेक अपेक अनाम अकाम अगाह अडार अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अबर्मंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंत नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निमासे निकामंग विभूते समस्त स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सोधर्मंग विभूते सदा सचदानंग संतरंग प्रणासी करी मुलकुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियंग करियंग रहीम करीमुल करहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते श्रियंग मंग सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग विभूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फ्रियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित पान पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मत्यंग जरे जसंग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे पारी बुजान के पू पली विद न्यावत शीस न जात विचारे इते पहे तो कहां पहे पूपत अंत को ना गए ही पाए पदारे जीत फ्रे दस देश दिसान को बाजत डोल मृदंग नंगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही हैराज हजारे पूत पविख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के दाम सिदारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम ने अनेक विसिख है वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान समान के पिख है पहुन आहार जति जतदार सबै सुबचार हजारक देख है श्री भगवान पजे बिन भूपत एक अति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाहा सो साज सुनाहा दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन में परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर माँ वासंग माते मतिंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बुरिया अब चार है सार की तार बछैया तोरत देश मिलंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनंद ने साचर ऊत पविक पवान जपेंगे जीव जितै जल में थल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बो पुंज कपेंगे साध समूह प्रसन्न फरै जग सत्र सबैव लोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जून त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर भिषण सचिपत अंत फसह जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के पसह पकते नर फेर न दे धरेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद के
बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियो लिए सास समुंदरन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विज्ञान स्यो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह बितायो साच कहूं सुन ले हो सुबह जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो काहूं ले पाहन पूज दर्यो सिर काहूं ले लिंग दरे लटकायो काहूं लखियो हर अवाची दिशा में काहूं पछा को शीश निवायो को बुदान को पूजत है पस को मृतान को पूजन दायो ऊर क्रिया उर जो सब ही जग श्री भगवान को पेद न पायो कूर क्रिया उर जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेंती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तवचर नन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हादै मोहे बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करै सबै रंको आ सिंगरै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन छत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास नवरिये उजो सदा हमारे पच्छा श्रीयस तुद ज्यो करे हो रच्छा राख लियो मोए राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजी अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो।

दिष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पटपट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तर्क तब धेय पारा। जबया करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सिरसव तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सभी ते रहत निरा

सर्वठोर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाय। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हा दे लेहो उबारी। सर्वठोर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया। शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस दे है सो पावे। सदा सिख सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर साथ सुख मनाए वसिया जिने इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां ए वडियाइयां। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागे। घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूध तुदवस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हरकेला।

बाणिया सिरबाणी जिनको नदर क्रम होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदारो हर रंग जप्यो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो हो यह सच्ची बाणी सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुर बाजो हो और कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना कहा किछू ना जानी चित जिनका हिर लया माया बोल न पै रवाणी। कह नानक सतगुर बाजो हो और कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हो आसमाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप विखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक कस स्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी। तेह गुणी संसार भ्रम सूता भ्रम सुता सुत्या रैन मेहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हरमन वसिया बोल है अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर लिव लागे जागत रैन मेहानी। माता के उधर में प्रतपाल करे सो क्यों मनहो विसारी है मनहो क्यों विसारी है एवड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे उसने कहो पोह न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए। कह नानक एवड दाता सो क्यों मनो विसारिये जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया माया अगन सब एको जे ही करता खेल रचाया जात स्पाणा ता जमया परवार पला पाया लिव छड़की लगी तृष्णा माया और बताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै मोह उपजै पाव दूजा लाया। कह नानक गुरप्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचै माया पाया। हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे बिटहो रहे लोक बिल्लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर स्वापी है बिचों आप जाए जिसदा जियो जिस मिल रहे हर वसै मनवाए। हर आप अमुलक है पाग तिना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवण जारा हर रास मेरी मनवण जारा सतगुर से रास जानी। हर हर नित जप्यो जीहो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तन मिल तिना मिलिया जिन हर आपे भारा। कहे नानक हर रास मेणी मन होवा मन जारा। ए रसना तू अन रास रही तेरी प्यास न जाए होर तकतै जित हर रस पल्लै न पाए। अरस पाए पल्लै पिए हर बहु न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाइए सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर अनरस विसरे जा हर वसै मन आए। ए श्रीरा मेरिया हर तुम मैं जोत तरी हे श्रीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जग दिखाया गुरप्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया। कह नानक सिष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापे। हर हर बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कह नानक

जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन मसया पूरब लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर प्रमाण होआ जिन सतगुर सो चितलाया ए नेत्र हो मेरियो हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर ने हालिया एहो भी संसार तुम देखते एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक ए नेत्र अंध से सदगुल मिले दिव दृष्ट होई ए सन्म हो मेरियो सचे सुनने नू पटाए सचै सुनने नू पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जे सुनी मन तन हरिया होवा रसना रसमाणी सच अलग विदानी ताकि गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सचै सुनने नू पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया बजाया वाजा नौ द्वारे प्रकट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नव निदित दांतन जाई पाया कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखे वाजा पौन मजाया एहो साचा सोयला साचा कर गावो गावो ता सोयला कर साचे जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुत पावे गुरमुख जिना बिजावे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे कहे नानक सच सोयला सचै कर गावे आनंद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे।

सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगै दान प्रभ रेन पग साधा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवां जह जह पेखो तैं हजूर दूर कतहू ना जाई रव रया सरबत्र मैं मन सदा त्याई। ए शब्द पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 677 ते 78 ते समायमान है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: नावे किस थाए न पाए रह में पेवाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी
1: भेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नजर करे सब पाए आसंदे से तहने केवल हाउ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पावंदे।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोक्ष द्वार, जति सदावे जुक्त न जाने छट बह करबार, सबको पूरा पे होवे घट न कोई आख, पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे महला पहला।
1: नानका सचा विखे सोई सब निशाला मारियां करता करे सोए, अगै जात न जोर है अगै जियो नवे, जिनकी पिले के पत बे चंगे से, के पौड़ी तुर करम जिना खुद पाया, ता तिन्नी हसम ते आया नजर तक है वसीज नहीं।

जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझता है। सतजुग रसंतो का धर्म गरथवा हो, त्रित रथ जत का जोर गरथवा हो, द्वापर तप का सत गरथवा हो, कलजुग रथगन का ऊड़ गरथवा हो। महला पहला। साम कह सितंबर स्वामी सच में।

चली चंद्रावर कान कृष्ण जादम आया बाहर जा गोपी ल आया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं भी दथर बन हुआ ना खुदाई लो पाया नील बस्तर ले कपड़े पहले

दर्शन फिटे भेट करें मन जूठे चुली पड़े का नानक सच ते आई है सोच हो सच पाई।

सोसंगी गनियां बिनस जाए जो निमुख महें सो आलप सुख पनियां प्रतपाले प्याओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अशल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जाकार रूप जप जप करे आनंद जन आचार्य अनूप सामत दयो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगल दान प्रभु

प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंग दान प्रभ रेन पग सादा परम सन्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तिन्हां दी पावन हजूरी च हाजरी भर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी ने रहमत वरताई है, बख्शिश कीती है, उद्दम बख्शा है, समत बख्शी है।

अचल अचेत अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करह आनंद जन अचरज अनूप सामत देहो दयाल प्रभ

0: दान प्रभ रेन पग साधा। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की
1: फतेह। और सत्कार योग शाह संघ जी माने कृपा की आप संगत ने बड़ी श्रद्धा भावना शायद मारे निकी रोदा आनंद मार दिया हुआ अमृत वे तो लैके पितुर गुरबाणी आशा की वाल सबून की सरण की ने उपरंत अज हुक्म नवी कथा विचार विद्वान विनोद सरण की अरदास आदि परियां ने उपरंत महाराज के बख्शे पितुर का में सरण किए हैं। सत संगत दे स्वासम गुरु साहबा ने आप साहब गुरु मुखात्मा ने बख्शिश किया है। आप सत संगत दे आपसे फिर पता है कि हर रोज तुसी लड़ीवार साहिब पाठ सरण कर रहे हो। इन्हां दे भोग पैणगे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी ने दिवस के नेड़े जाके सो जिहड़े नाल हर रोज सत्संग जी तुसी सहज पटराम कीते ने नाल कर रहे हो हर रोज आप सब भाग्य हो साथ ही किसी इस सहज पाठा के बारे इन्फॉर्मेशन लैनी हो तुसी सैकटरी साहब भाई रजिंदर सिंह जी वंग साहब नाल संपर्क करके तुसी अपने नाम टैलीफोन दर्ज करवा सकते हो। सो इन्हां दी वो आप संगत बेनती है तो सत्संग जी आप होर संगत बेनती है कि जून दो नू है सत्संग जी जून एक तो लैके सत तक स्पैशल कीर्तन दरबार हो रहे हैं जो नींदा सखा तारा दरबार साहब से अटैक होया सी उस संबंध में हर रोज एक तो लैके सत जून तक सत कीर्तन होने कारण हर रोज शाम के तो जून दो नू है जन्म संत बाबा जन्मदिन संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडा वाले का तो उस दिन जरूर मनावे जरूर संगत ने कृपालता करनी है। तो सत्संग जी जून चार नू है अटैक जो दरबार साहब से होया साका नीला तारा वो बड़ा प्यारा समा से जो जिन्हें जिन्होंने देखा वेख्या या चल रहा जिन्होंने वो इस सब तरह चंकी तरह जानते हैं। उस समय सत्संग जी जिन्ह ने पवित्रता गुरसिखी गुरु साहब के प्यार कायम रखने वास्ते जिन्हें कुरबानी दी ने माई भाई बच्चों ने उन्हें सारे असं जरूर चार तरीक न सारे हाजरियां भरो उन्होंने याद करिए उन्होंने चादियां वेट करिए उन्होंने कुछ सीखने वास्ते असं आप ही कोशिश करिए। सत्संग जी जून पांच नू है जन्मदिन प्यारे भाई मुख सिंह जी का उस दिन राज परोसरे महाराज चरणा जी उन्होंने दिखाई हदायतों को असं जरूर कबूल करिए। सो जून छे शहीदी संत बाबा जरनैल सिंह जी की उस दिन भी जो उन्होंने साढ़े सारे दुख अपनी चोड़ियाँ पा के छेद दी सी उन्होंने असं याद करिए असी सारे उन्होंने श्रद्धांजलियां मिलकर भेंट करिए। आने भाई साहब तैयार ने सहज प्रणाम करने की सरण करिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
0: वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो जो सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे लाही प्राप्त कर रहे हो घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे नाल जुड़े हुए हो। आओ समा होया श्री सहज पाठ का अज पावन अंग 296 तो आप अगे श्री सहज पाठ प्रारंभ करने हैं। पावन श्री सहज पाठ 296 अंग तो प्रारंभ हो रहे हैं।

बिन सहक सगल कलेस आप तजहु गोबिंद भजहु पाऊ भगत परवेस। लाभ मिले टोटा हिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवै साच साह भगवंत। उठत बैठत हर भजहु साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

रचनहार नह सिमरेउ मन ना विचार विवेक पाउ भगत भगवान संग माया लिपत नरंच नानक बिरले पाई यह जो नर चह परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊचौक है अंत न पारावार भगत सोह है।

निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र इसनान, सब मह ऊच विशेख ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुरसंग, जप तरिय नाम।

करन न सुनही हर जस बिंद, हिरहै पर दर्ब उदर कहताई, अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे। श्लोक दस दिस खोज।

आवत जात नरक अवतार। हर हर भजन न मन मह आयो, सुख सागर प्रभ निमक न गायो। हरख सोग का

जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तह बसह दयाल, सूखम असथूल सगल भगवान, नानक गुरमुख

आठ पहर नमस्कार। अकथ कथा नह बूझिए सिमरहु हर के चरण, पतित उदाहरण अनाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। श्लोक दुख बिन से सह

जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा। सतगुर हर प्रभ दस, नाम त्याई मन हरी। सतगुर हर प्रभ दस, नाम त्याई मन हरी। नानक नाम पवित्र हर, मुख बोली सब

सतगुर अंदरो निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म इक सोए, निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे, तिन विचो तिष्ठिया ना कोए, सतगुर सब

मोह कुटम दिस्यावदा सब चलन हारा आवण जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाए दे से कुड़ियार कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मुए अजाना जो बिन सच्चे होरत चित लाए दे से कुड़ियार कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मुए अजाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयो गुरु रूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा गुरु बख्शिश का सदका निता प्रति सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी के श्री सहज पाठ नाल जुड़ते हो। अज भी गुरुदेव जी ने कृपा की है पावन अमृत बाणी के श्री सहज पाठ आपां कीते हन सरवण कीते हन। गुरु कृपा करे जितनिया भी संगतां ने गुरु चरणा विच बैठ के घरां विच बैठ के हाजरियां लवाईयां हन सतगुरु जी सभना की हाजरी दर प्रवान कर लैन दरों घरों नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला गुरुदेव जी बख्शिश करके नवाजन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने भुला ना चितार दे फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तही प्रकाश हमारा पहो। पटना शहर दिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहेब कमाल जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहब जी का आना पटना की धरती से साहब जी का प्रकाश होया ते कहते ने पीर भीखण साहब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा पीर जी की गल ठीक हो, अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया का मालक वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह जुड़ी हुई रूह जिसनू पता है जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करदे हां पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए पीर भीखण साहिब कहिंदे ने तीन महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन। तुर पए तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे दर्शनां दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने दो कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार। साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी हिंदुस्तान दी लाज रखी, पावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आखदे ने जिहदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।